उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

93 से आप सुने सुपर हिट सॉन्ग टेढ़ी अखिया का जो काजल मुझे तरपावे मॉय उजाला रेडियो पर आप सुने हैं इस गीत को एंड न्यू मरहूम नदीम खान जी

और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अभी आप गीत को सुने मरहूम नदीम खान साहब की आवाज में उजाला रेडियो पर। और अब किरण केदार, मैं दिल था अकेला।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

हमारा साथ जो आप यहाँ तक दिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बहुत जल्दी यहीं फिर मिलेंगे।

0: कसम।
1: और कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। लता जी के साथ अमित कुमार से गीत को आप सुने, फिल्म लव स्टोरी से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: उजाला रेडियो दे अवे प्लेस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते ओ तुम्हें तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो.
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

6:06 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। यू आर के स्टूडियो रतनराम से एकदम लाइव एंड डायरेक्ट। आज ये बुधवार 24 तारीख जून का जो दिन है, रात्रि का ये प्रोग्राम हम सजाने आए हैं। बैक टू द फ्यूचर फिर एक बार रात्रि में 9 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनराम से। आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब है। शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए और तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, स्वागतम स्वागतम। इस महीने जून का आखिरी बुधवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, और आज इस आखिरी बुधवार 24 तारीख जून को हम आज भी आखिरी प्रोग्राम सजाएंगे देवानंद साहब जी का, क्योंकि इनके मूवी से आज का ये प्लेलिस्ट जो हमने सजा रखा है, खूबसूरत नगमाएं फिर एक बार जो इन पर पिक्चराइज किया गया है, और जो हसीन हसीन पुरान यादें हैं बीते दिनों का सेवा में हम पेश करने वाले हैं फिर एक बार, और इसका आखिरी प्रोग्राम है। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आप सभी ने अगले प्रोग्रामों को पसंद किया है, नगमाओं के साथ काफी मजा ली है, आज भी आप भरपूर मजा लेंगे। ओपनिंग सिलेक्शन पेश करने से पहले मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम तो है लेकिन फिर भी कह देता हूं कि हमारे प्रोग्राम हमेशा हमारे प्रोग्राम के दौरान व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं मुझसे। 9203309009 यू आर स्टूडियो का व्हाट्सएप है। 02-03-6-3-08-08 आप ऐप करें, जवाब ही मिलेगा और वहां पर भी कुछ बातें हो सकते हैं, और बातें ऐसे ना हो दफ्तर की बातें तो ठीक, क्योंकि दफ्तर की बातें जैसे कि आपके फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो आप स्टूडियो को मत ऐप कीजिएगा, मार आप या तो मेल करें दफ्तर को, या तो आप तार करें दफ्तर को। तार आप कर सकते हो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे, शाम में 3 बजे, और वो भी तार का नंबर जो है दफ्तर का 02-03-09-09-07-02-04-09-08-07। या तो लगातार 24 घंटे 7 दिन आप अपना कामकाज, फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी आप इंफॉर्मेशन करवाना, जानकारी आप प्राप्त करना चाहोगे या काम करवाना चाहोगे, आप मेल करें info@ujala.nl। धर्मदेव पशोड़ी मल आनंद, जिसका पैदाइश 26 सितंबर 1923 का हुए है, निहत इंद्रियंत्र 26 सितंबर, और हमें दूर छोड़कर चले गए अपने सारी यादें, मूवीज में खूबसूरत गाने। 3 दिसंबर साल 2011 में, जो ये साल 15 साल को होने को आएंगे, और उस वक्त जब ये दुनिया को छोड़ चले थे

वो भी इंग्लैंड लंदन में, लंदन में ये 88 यार के उम्र में परलोक सिधार गया था 88 साल। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, और जानकारी इनके बारे में बहुत सारे इंटरनेट पे आपको मिलेंगी। देवानंद जी इनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा गया है, खान केयर गूगल सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। आज का ओपनिंग सिलेक्शन हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है देश परदेश और ये फिल्म नीहती नख्तन सी वंतख का है। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत अमित खन्ना जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार राजेश रोशन, किशोर कुमार, अमित कुमार, मनहर उदास को हम पेश करते हैं। एक शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए, एंजॉय बैक टू द फ्यूचर ऑन योर फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो।

नजर लगे ना साथियों आज भरी महफिल में, दो न जाए ये दिल इन गोरी गोरी बाहों का जो मेम है। मस्ती भरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार, अमित कुमार, मनहर उदास और साथियों ने मिलकर गीत गाए हैं अमित खन्ना का लिखा हुआ, और वो भी राजेश रोशन के साज और संगीत पर। देश परदेश फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, ये एक फिल्म निहति नख्तन सीफ तक का है। देवानंद साहब जी इन्होंने प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट किया है। देखता हूं प्रेम चोपड़ा भी है, प्राण साहब जी, टीना मुनीम जी को इंट्रोड्यूस किया है, अजीत साहब जी, अमजद खान, बिंदू टोमेल्टर, डॉक्टर श्री राम लागू, भरत कपूर, सुचित कुमार, इंद्रानी मुखर्जी, एन नचुलक महमूद साहब जी, पैंटल, ए के हंगल, बीरबल, यंकी दास, राज मेहरा। उजाला रेडियो है ये, फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे सिनवालो, तिस बैना नीह तीन मिनट ओवर सिस। रात हो गया ऐसा तो नहीं दिखता है, क्योंकि भैया कड़क धूप है, बहुत गर्मी छाई हुए हुए है और हित प्लान चालू है, तो आप नतुलक फुलदुंड आपको पीना चाहिए, पानी, लिमोनाड, टी, कॉफी, लेकिन आप पीजिएगा और आप अपना घर को फुरा लोग दराम देख लात इतनी इतना बेनवा है, तू जाने तो गर्म लोखा है भीतर, तो वो भी आफत है, खुरदाई ने देख लात सोनी बेन को हावत हाई स्कूल, और लेखाम को अगर कूल भी करना चाहोगे तो शादियों में नतुलक आप बैठे और प्रबेर बोध खप फ्रूख फोर्थ वाला फ्यूटर दो ऑफ ना सेस्यूर। आजकल तो दुकान सुबह 7 बजे खुल जाते हैं और ना जाने 10 बजे तक आप सुपरमार्केट जा सकते हैं, और घरे अगर आप बैठोगे तो फुट बाचे में ठंडा पानी में आप अपना पैर रख सकते हो, दत सोर हुक नतुलक फॉर कूलिंग। और जहां किसी प्रकार का दौसलक है, धूप पैन फरमुइत है या हिल एड़ख प्यास जब आपको लगेगा और आप एक्स्ट्रा पी रहे हो, सभी कुछ कर रहे हो फॉर कूलिंग करने के लिए लेकिन फिर भी हो नहीं रहा, तो प्याल आल्स टू ब्रीफ में तीन ढाई साठ तू जाने तो। और कभी कभी दवाइयां जो हम पी रहे हैं रोजाना, उनके जरिए से भी तीन जो है परहित हो सकते हैं, तो संभाल के लेट एयर आल्स टू ब्रीफ ऑफ। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस गर्मी का जो मौसम है, ना सिर्फ अपने आप को लेकिन एक दूजे को भी हमें देखना है, बुजुर्गों जो लोग लाचार है, बीमार है, उन्हें बैल कर तार कीजिएगा या तो आप उन्हें उनके पास जाइएगा, शायद उनको आपका मदद जरूरत पड़े और वो खुद नहीं कर सकता है घर में। दत मुतुलियोग नीत फरगीद प्रबे दत दून लातो दत में तलकार दून, ऐसा हमें सिखाया गया है कि एक दूजे के काम में आना चाहिए और संग संग मिलकर हम ये जो गर्मी का मौसम है भी हम झेल लेंगे। गर्मी हमें चाहिए लेकिन इस तरह का गर्मी का नतुलक साद फरिख्त। ठीक है, बहुत हो गया डॉक्टर रतन का बातचीत, आपको ले चलते हैं मूवी की ओर जिसका नाम है असली नकली। मेरे प्यारे सुनने वालों, असली नकली मूवी 1963 का है, निहत इंद्रियन सेस्त और देवानंद साहब जी जिनका आज हम फाइनल एडिशन पेश कर रहे हैं बैक टू द फ्यूचर में, और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। तो देवानंद साहब जी का ये फिल्म हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत निकालेंगे और जो मिलकर गाएंगे शंकर और जय किशन की साज और संगीत पर, द क्वीन लता जी और मेलोडी किंग रफी साहब जी, ये नगमा

तुझे जीवन की दौड़ से बांध लिया है। रवि साहब जी और लता जी की खूबसूरत आवाजों में ये रोमांटिक सॉन्ग जो हसरत जयपुरी जी ने लिखा, इन दोनों ने मिलकर गाए हैं शंकर और जय किशन के साज और संगीत पर। 1963 नेहंतिंद्रियन सेस्तख का मूवी असली नकली से हमने नगमा को निकाले। ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्ट क्या हुआ मूवी, देव साहब जी और ब्यूटीफुल साधना का एक फिल्म जिसमें मुकरी भी है, लीला चिटनिस, नाजिर हुसैन, संध्या रॉय, अनवर हुसैन, कैस्टो मुखर्जी।

0: इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो वालों, हम फिर वापस चलेंगे द 70s की ओर। 1974 का एक फिल्म जिसका नाम है इश्क इश्क इश्क, तीन बार इश्क। और ये फिल्म का एक खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग, मूवी का टाइटल सॉन्ग भी है, पेश करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत है, जो राहुल बर्मन, आर डी बर्मन की साज और संगीत पर मिलकर गाएंगे हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। इश्क जमाने में जो करते हैं,
1: इश्क इश्क इश्क

इश्क जमाने में जो करते हैं न जीते मरते हैं, आशिक वो नहीं बन सकता जो डरते हैं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। और हम डर डर के और या मर मर के क्यों जिए, जी जी के हम अगर मरे तो और बात होंगे ना। ये था नाइटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार की आवाजें। इनकी खूबसूरत आवाजों में गीत आप सभी ने सुना है आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन के साज और संगीत पर। मूवी का टाइटल सॉन्ग नीखंतीन फीरन सेवन तक का फिल्म इश्क इश्क इश्क का नगमा। ये फिल्म भी मेरे प्यारे सुनने वालों देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है। द ब्यूटीफुल सीना तमान के साथ प्रेम नाथ इफ्तखार, शबनाजमी, कबीर बेदी, सरीना वहब, जीवन साहब जी, ए के हंगल, कमिला वर्क, नादिरा बिरबल, यंकी दास, त्रिलोक कपूर, सुधीर। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन है ये मेरे प्यारे सिनेवालो उजाला रेडियो लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। फिर एक बार क्योंकि बुधवार है सजा रहा हूँ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और बैक टू द फ्यूचर मेरे प्यारे सिनेवालो 6 बजे हमने आराम की है रात्रि में, हमेशा की तरह 9 बजे सेवा हम करेंगे। घड़ी की तरफ अगर मैं देखूं तो अतिस बहना दरी मनुत ओवर द क्लॉक फन हाल ऑफ सेफ। और हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, वापस हम जाएंगे द 60s में और वो भी 1963 नीखतीन द्रियन सेस। और जहां तक मेरा ख्याल है फिल्म का टाइटल सॉन्ग ये भी है हसरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत। लता जी और रफी साहब जी को फिर एक बार हम पेश करेंगे प्रोग्राम में और वो भी एस दे बर्मन सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। तेरे घर के सामने फिल्म अजनीहतिंद्रियन से 1963 का टाइटल सॉन्ग ये दोनों मिलकर गाएंगे।

घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने और अपना ये दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। लता जी और रफी साहब जी की खूबसूरत आवाजों में खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ सेवा में हमने आप तक पेश किया है। संगीतकार एस दे बर्मन सचिन देव बर्मन 1963 निहत इंद्रियन शस्त्र का फिल्म तेरे घर के सामने से हमने नगमा को निकाले। ये फिल्म का प्रोड्यूसर और एक्टर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी है, डायरेक्टर गोल्डी आनंद इनके छोटे भाई विजय आनंद है, न्यूटन के साथ मूवी में काम किया है और इन दोनों के अलावा ओम प्रकाश, यंकी दास, राजेंद्र नाथ, मुमताज बेगम, प्रतिमा देवी, रशीद खान और परवीन चौधरी। इस गीत के बाद 10 साल फिर एक बार वापस ऊपर हम चढ़ेंगे और जाकर पहुंचेंगे 1973 मेरे प्यारे सिनेमा निहत इंद्रियन सेवन। फिल्म का नाम बनारसी बाबू और ये फिल्म का एक खूबसूरत प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूँ। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ कल्याण जी अनान जी पेश करता हूँ। ईरान यू आर बैक टू द फ्यूचर में मेरे प्यारे सिनेमा वालों।

हाँ जी, मेरे पीछे एक लड़की, एक लड़की पगली सी, आवारा तितली सी, झूम रही है, झूम रही है, दिल दे दूं उसको मैं कैसे। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, इन्होंने गाकर सुनाए हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसमें काफी छेड़छाड़ थे, लेकिन छेड़छाड़ में प्यार भी होता है बहुत। रजिंद्र कृष्ण जी इनका लिखा हुआ खूबसूरत गीत विद ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ कल्याण जी अनान जी, किशोर कुमार ने ये गीत गाकर सुनाए। बनारसी बाबू फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिने वालों, और ये फिल्म 1978 का है। निहत इंद्रियन सीवंत शंकर मुखर्जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद का डबल रोल, और राखी गुलजार भी है फिल्म में, जुगीता बाली जीवन साहब जी। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि हर एक घंटे पर आप सुनेंगे इश्तिहारे, देश विदेश का समाचार, मौसम का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है, और अफसोस के साथ भी ये कहना भी हमें पड़ता है कि उजाला रेडियो के जरिए भी 7 बजे इश्तिहारों के बाद थोड़ा सा मृत्यु समाचार है, मौत की खबरें जो पुकारा जाएगा, पढ़ा जाएगा हियर ऑन यू आर। बरिख्त फन ओवरलेड हिलास ना द सोशल ब्रेक फन सेफ हियर ऑन यू आर, और उसके बाद सो रोंट देर तीन ओवर सेफ, आप सभी की खिदमत में हम फिर वापस आएंगे लेकर देवानंद साहब जी के और भी दिलचस्प इनके खूबसूरत गाने। मेरे प्यारे सुनोलों, ले चलता हूं अगले गीत की ओर, हम आपको फिर एक बार वापस ले चलेंगे वक्त में, और 1961 निहती नई नंसेस्तक, या अभी तक मेरा पैदाइश नहीं हुआ था, एक वस्तु नोख नी खबूर नोख लांग नीत, लेकिन फिर भी हमें नगमाएं पसंद है। नटुलक फन द 50s द 40s का भी कुछ गाने मुझे पसंद है, एक बेन हिल प्रीत क्वा म्यूजिक एक्टवार, एक रोमांटिक सॉन्ग फिर एक बार, मजरू सुल्तानपुरी जी अब की बार इनका लिखा हुआ गीत लता जी और रफी साहब जी मिलकर गाएंगे, सलील चौधरी की साज और संगीत पर, फिल्म का नाम है माया, और माया 1961 का फिल्म है, निहती नई नंसेस्तक की तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, पेश करता हूं।

तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उठाड़ी है। लता जी और रफी साहब जी की खूबसूरत आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, सलील चौधरी की साझा और संगीत पर। माया फिल्म का नाम, माया 1961 का मूवी है, निहति नैनन सिस, और ये फिल्म डॉक्टर केशव जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी है जिसमें एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी ने काम किया है द लवली माला सिन्हा जी के साथ। जयंत सुंदर आगा साहब जी, ललिता पावर हेलन ने भी काम किए हैं। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनोल एक छलान लगाएंगे बारह बरिस का एनन कुम अपनी हतिंद्रियन सीवन 1973, एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनोलो, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और नाइटिंगेला शाह जी आर डी बर्मन के साज और संगीत पर, फ्रॉम द मूवी शरीफ बटमाश।

चुरा के रातों में और तुमने बस बातों ही बातों में। या खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों जो सेवा में पेश किया गया है किशोर कुमार और नतुलक नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, दोनों ने ये गीत मिलकर गाए हैं एर डी बर्मन की साज और संगीत पर। शरीफ बदमाश फिल्म का नाम, अजनी हतिंद्रियन सीवद 1973, प्रोड्यूसर एक्टर देवानंद साहब जी, राज खोसला ने डायरेक्ट किया है और हिन्नी जैसी आंखें वाली द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ ये फिल्म बनाया गया है। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनवालों, इस आखिरी गीत के बाद 7 बजे की इश्तिहारी और इश्तिहारों के बाद जैसे मैंने कहा अफसोस के साथ भी उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार मौत की खबरें भी प्रोग्राम में पुकारा जाएगा। एना मैंने करदारना रोन 13 मिनट ओवर सेव वापस लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। जाली नोट से निकालेंगे नगमा राजा मेहंदी अली खां का लिखा हुआ गीत और जिसका संगीतकार है ओपेनयर। जाली नोट एक फिल्म है 1907 का, नीहतीन सेस्तर।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। पेरमरन से माँ रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनन जस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम आनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु आएमसी हॉस्पिटल अम्स्टरडम में हो गई है। परमरन से माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल की आयु में इनन सस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शुक्रवार की रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक फ्रेदाफन फनफ देला अवरीना के मुर्दालय होर्न बुख इन अम्स्टरडम जोतोस में। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनिस घर घराना में यानी कि बसलोतन क्रिंग में आने वाले सोमवार को किए जाएंगे। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 0646 49 64 64 0646 49 64 64 64। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार पाटन दिन और परिवार मारापिन के दुख में शामिल है।

ही मैंने कसम ली और तूने भी कसम ली कि नहीं होंगे जुदा हम। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, नीरज जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं। एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर तेरे मेरे सपने फिल्म का नाम 1971 का नेहती नेनन सेवंत। देवानंद प्रोड्यूसर और एक्टर और मूवी का डायरेक्टर इनका छोटा भाई विजय आनंद, गोल्डी आनंद है। मुमताज के साथ ये गीत पिक्चराइज किया गया है मूवी में, साथ भी है ये फिल्म में हेमा मालिनी, विजय आनंद, आगा साहब जी, सापरू साहब जी, जय श्री टी, लीला मिश्रा भी है और देखूं तो तबसुम बेबी तबसुम, प्रेमनाथ भी, महेश पवार भी है, उमा दत्त दुलारी साहब जी, मुमताज बेगम। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, बुधवार की रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। बैक टू द फ्यूचर, घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 19 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 60 बजकर, 3 मिनट ओवर सेव। ये है उजाला रेडियो लाइफ एंड आर है क्यू आर के स्टूडियो रोटरडाम से, बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। आज इस आखिरी बुधवार, ये महीना जून का, हम आखिरी भी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का। इनके मूवीज से गीत जो इन पर पिक्चराइज किया गया है, निकाल कर प्लेलिस्ट को हर एक हफ्ता हमने सजाए हैं आज भी, और प्लेलिस्ट से बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ निकाल कर आप तक हम पेश कर रहे हैं। स्वागरी राज दर्शन भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं अमस्टरडम में, आनंद भी ले रहे हैं अमस्टरडम सेंटर में प्रभाजी डंकीवेल, स्वागरी राज दर्शन जी और प्रभाजी अमस्टरडम सेंटर डंकीवेल भी हम कहेंगे धन्यवाद। शारदा अयतारनम, आप ही आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। बेटी जी एट खरोनिंग, बेटी जी हाँ, स्टूडियो में एयर को होना जरूरी है, ना सिर्फ बाहर की गर्मी यहाँ छा रहे हैं लेकिन गर्मी भी फंड अपर्टूर, आपको मालूम होना चाहिए ये भी गर्म किए देता है, तो एयर को चालू है। और मैं मगन के साथ, बहुत ही आनंद के साथ ले रहा हूँ भी ये प्रोग्राम का मजा। सुशीला चंद्रिका सिंह जी आइट आमसलफेन, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद भी हम कहेंगे मार्सब्रुक का हेड एंड्रो जी और चित्रा जी, जो भी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। दूर वहां डबी कैपल में, यहाँ शायद वेका भी हो रहे हैं मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में, तो डबी कैपल न्यूयॉर्क सिटी से कविता, हाँ जी कविता जी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। फुल ऑन उजाला रेडियो, थैंक यू वेल कविता आपके ऐप के लिए। आप उजाला रेडियो को सुन रहे हैं तो आप पगली नहीं है, बहुत समझदार है आप कविता जी। जो लोग समझदार है उजाला रेडियो पर चून किए करते हैं, जैसे कि मिक अदनाह, थैंक यू वेल मिक ओक फोर ये एपियर, मिका जी भी आनंद ले रहे हैं दनहाग शहर में और अमस्टरडम शहर में भी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। आईफी जहांगीर, थैंक यू वेल आईफी फॉर योर ऑलवेज सपोर्ट, थैंक यू वेल आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से हम प्रोग्राम सजाएंगे ये हफ्ते और आने वाले दिनों, हम आपको एक गीत के बाद बताएंगे जरूर। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे एक और पॉपुलर सॉन्ग जो देवानंद साहब जी और आशा परेख पर पिक्चराइज किया गया था। एक गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार शंकर और जयकिशन।
लता जी और रफी साहब जी जो गीत गाएंगे फ्रॉम द मूवी जब प्यार किसी से होता है, एक फिल्म 1961 का निहति ने ननसेस। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और ये प्यार कल भी रहेगा।

सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ जी मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लता जी और रफी साहब जी की खूबसूरत आवाजों में ये रोमांटिक सॉन्ग हसर जयपुरी जी का लिखा हुआ, शंकर और जय किशन की साज और संगीत पर दोनों ने ये गीत मिलकर गाए हैं। जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, 1961 का फिल्म है, नी घटी नई नन सस्तख मेरे प्यारे सुनने वालों, नाजिर हुसैन का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, और देव साहब जी और आशा पारेख का एक फिल्म जिसमें प्राण साहब जी भी है, सुलक्षणा रजिंद्रनाथ, राज मेहरा और बहुत सारे और लोग।

जैसे मैंने कहा, एक गीत के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रोग्राम सजाएंगे हियर ऑन यू आर। फिलहाल तो आने वाले चार हफ्ते जो हैं, हर एक बुधवार और बृहस्पतिवार हम बनाएंगे सजाएंगे प्रोग्राम अब बैक टू द फ्यूचर एंड ऑफ द दिल की आवाज। उसमें सिर्फ वक्त का बदली हो सकते हैं, लेकिन एक बैनर सोविसो। और रहे शनिवार की बात, तो आने वाले शनिवार सेवनंतविंद हाजी 27 तारीख जून, जो इस महीने का आखिरी शनिवार है, आपका सेवा हम करने चले आएंगे। और अगले हफ्ते जो नए महीना जुलाई का पहला शनिवार है 4 तारीख, भी आपका सेवा ऑफ द साथ रखावन करने चले आएंगे। इंदारना कन इक नी मेर ऑफ द साथ रखावन फन वीग वरप्लिखटिंग एंड ओक वीच वकांसी जो भी होंगे एंड जुली से। तो मेरे प्यारे सुनो, जिस तरह से हम प्रोग्राम सजाएंगे, अब आपसे हमने कहा है कि द कोमन फीर वेक एल्क वुंसदाग और डोंडरदाग हम सजाएंगे बनाएंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर और दिल की आवाज। और है शनिवार के बाद, तो आने वाले शनिवार एंड फोलगेंड वेक सैटरडे आपके सेवा में खिदमत में हम हाजिर रहेंगे। एंड डरना फोरन तेज साले कर नीमर सैन ऑफ द सैटरडे हाफ। तो ले चलते हैं अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। वखान फान 1961 गाँव ना 1973 फिल्म का नाम जोशीला और फिल्म 1973 का है 1973। एक गीत हमारे प्रिय सहील लुधियानवी जी का लिखा हुआ है और किशोर कुमार और लता जी गीत मिलकर गाएंगे। आर डी बर्मन की साज और संगीत पर, राहुल बर्मन की साज और संगीत पर एक प्यार भरा गीत जिसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ है, रोठना मनाना तू जाने तो कुछ भी कर लो, एक दिन तुमको मेरा ही होना होगा। फ्रॉम द मूवी जोशीला पेश करता हूं

कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। हसीन के पुजारी किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, हमारे प्रिय सहिल रुझानवी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन बहुत सारा छेड़छाड़ और उठना मनाना था इस गीत में। संगीतकार आर डी बर्मन, रहुड बर्मन, मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम जोशीला। ये फिल्म 1973 का है, निखत इंद्रियन सी, मतलब यश चोपड़ा जी का डायरेक्ट किया हुआ, और देवानंद हेमा मालिनी राखी, पद्मा खन्ना, मनमोहन कृष्ण, रुपेश कुमार, प्राण साहब जी, बिंदु, महेंद्र संधू, आयुष जोहर, मदन पुरी, लक्ष्मी छाया, ए के हंगल, इफ्तखार, जगदीश राज, सुलक्षणा और सुधीर का एक फिल्म। 5 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 7 बजकर या हाल्फ 5 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ आख लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। मोरखनाफन धन बैनेकर में दिल की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, रात्रि में 8 बजे से 11 बजे आपका सेवा हम करेंगे, लेकर सुंदर सा प्रोग्राम दिल की आवाज विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स। तो मेरा साथ उम्मीद और आशा करते हैं आज की तरह कल भी आप साथ देंगे। वापस ले चलेंगे आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों 1961 के ओर, निखत नैनन सेस्तक, फिल्म का नाम हम दोनों, और एक और गीत हमारे प्रिय सहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ आप सुनने को जाएंगे रफी साहब जी की आवाज में, और जिसका संगीतकार है जयदेव। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हाँ मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, गीत पेश करता हूँ हीरो निवार।

मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। गलजन पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी इनका लिखा हुआ गीत रवि साहब जी ने गाकर सुनाए हैं जयदेव की साज और संगीत पर। 1961 नेह दीनानंद सेठ का फिल्म हम दोनों से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर अमरजीत और प्रोड्यूसर और एक्टर देव आनंद साहब जी, इन्होंने ये मूवी में काम किया है नंदा के साथ, साधना भी है, ललिता पौर जागीरदार, रशीद खान, लीला चिटनिस, जगदीश राज। ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं श्रीराम रतनम का प्रिंसेस राज, डंकी वेल आपके ऐप के लिए एंड हिल फिल्स डायरेक्टर आइलिन जी आइट हार्लेम को भी हम दंकीवाल कहेंगे धन्यवाद चून करने के लिए, और आनंद भी ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ आमस्टरडाम का भैया सुनील दंकीवाल। सुनील हमेशा, सुनील जब भी सुनता है ऐप करते हैं, पावर करते हैं, तो आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत की ओर नीरज का लिखा हुआ हम आपको ले चलेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1971 रोमांटिक सॉन्ग जो मिलकर गाएंगे एस डी बर्मन सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और मेलोडी क्वीन लता जी। फिल्म का नाम गैम्बलर मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत का बोल कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है।

चूरी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो ये टूटे ना। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, पॉपुलर सॉन्ग ये था नीरज का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर मेरे प्यारे सुनने वालों। और फिल्म का नाम गैम्बलर, गैम्बलर 1971 का फिल्म है। नेहति नैनन सेवंत अमरजीत ने प्रोड्यूस और जो डायरेक्ट किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहिरा, शॉटगन सुधर हंसीना साहिदा, सापरू साहेब जी, किशोर साहू, सुधीर इफ्तखार, मुमताज बेगम, बीबी तबसुम, जीवन साहेब जी, मनोरमा, सचिन पिलगांवकर, जगदीश राज, रशीद खान, बिरबल, इन सभी का एक फिल्म है। तो मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि कल रात्रि को 25 तारीख जून को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज। यही स्टूडियो रतनाम से प्रोग्राम हम सजाएंगे लाइव एंड डायरेक्ट 3 घंटे लगातार आप सभी के लिए। एन 7 रख आने वाले शनिवार 27 यूनी मेरे प्यारे सुनने वालों 27 तारीख जून को सैटरडे नाइट फीवर पेश करेंगे रात्रि में 7 बजे से 12 बजे 5 घंटे आप सभी का सेवा हम करेंगे विद ब्यूटीफुल नए जितने भी निकल आए हैं लोकल्स और उनके साथ साथ कुछ पुराने भी शामिल रहेंगे। तो अवश्य यू मीट और आशा के साथ प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे कि आप मेरा साथ देंगे और काफी आनंद लेंगे उन प्रोग्रामों के साथ। गैम्बलर के बाद मेरे प्यारे सुनवालो खाओ तुरख ना 1960 फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू एक मस्ती भरी गीत फिल्म से निकालेंगे, एक गीत जो मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा और जो मिलकर गाएंगे सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर नाइटिंगेल हाशा जी और रफी साहब। ये नगमा

0: हुआ दिल जाने कहां होके बहार आई। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, नाइटिंगेल आशा जी और रफी साहब जी की आवाजों में गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुने हैं। संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन, और फिल्म का नाम बंबई का बाबू, 1907 का फिल्म है। 1960 तो राज खोसला जी इनका प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें देवानंद ने काम किया है सुचित्र सेन के साथ, नाजीर हुसैन भी है, रशीद खान, अंशिला सखदेव, जगदीश राज, जीवन साहब जी और धूमल। एनएनसी एक दातिक लास्ट नंबर इस घंटे का पेश करेंगे और इस आखिरी गीत के बाद ब्रेक की ओर हम बढ़ चलेंगे। आखिरी गीत इस घंटे का मेरे प्यारे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी 1970 का मूवी है। आप सुनेंगे एक नगमा लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में, एक गीत जो नीरज ने लिखा और वंस अगेन संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। ये फिल्म प्रेम पुजारी 1970 देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है, वहीदा रहमान के साथ, शहीदा, सचिन पिलगांवकर, प्रेम चोपड़ा। इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर जरूर से जरूर हम मिलेंगे।
1: आ जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तफाक है। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की खूबसूरत आवाजों में रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुने हैं। संगीतकार शंकर और जय किशन, फिल्म दुनिया से हमने नगमा को निकाले हैं। दुनिया फिल्म 1969 का है, नीहती नीहनन सस्ख और खूबसूरत गीत ये मूवी का जो हमने निकाले हैं। मैं देखता हूँ मूवी का डायरेक्टर प्रकाश राव जी, प्रकाश राव और देवानंद साहब जी ने ये मूवी में काम किया है। विजयंती माला के साथ प्रेम चोपड़ा, बलराज सहनी, जॉनी वॉकर, मदनपुरी, ललिता पावर। उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं मेरे प्यारे सिनेवालो और लाइफ एंड आरआईक्यूआर के स्टूडियो रोटरडम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज आखिरी बुधवार है महीना जून का, 24 तारीख, और इस आखिरी बुधवार को भी आखिरी प्रोग्राम हम सजा रहे हैं द ग्रेट एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का। कुछ हफ्ते हमने आपका दिल बहलाए हैं इनके गानों के साथ, नगमाएं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है इनकी मूवीज में। आज आखिरी प्रोग्राम सजा रहे हैं। अगले हफ्ते जो नए महीना जुलाई का पहला है, एक और मशहूर महान कलाकार का प्रोग्राम सजाएंगे। इट इज 13 मिनट ओवर अख मेरे प्यारे सुनने वालों, 13 मिनट गुजर चुके हैं 8:09 तक आपका साथ हम देंगे लाइव एंड आरआईक्यूआर के स्टूडियो रतनाम से, यहां से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आंखों ही आंखों में

इशारा हो गया। हमेशा पहला पहला प्यार आंखों से ही होता है। तो ये गीत जो जान निसार अख्तर जी ने लिखा, मिलकर गाएंगे गीता दत्त और डलेजन पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी, वो भी ओपी नैयर के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम सीआईडी और ये फिल्म ओ बॉय ओ बॉय 1956 का है। नीहतीन सेशन फाइव तक

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। रफी साहब जी की आवाज साथ दे रहे थे गीता दत्त जी, जान निसार अख्तर जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग्स अबाउट आइस, आंखों पर लिखा गया ये रोमांटिक सॉन्ग प्यार भरा नगमा, और जिसका संगीतकार थे ओपन ईयर। सीआईडी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिनेमा, और फिल्म सीआईडी 1956 का एक मूवी है। 1956 राज खोसला फिल्म का डायरेक्टर और एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद ने काम किया है वाहिदा रहमान के साथ, शकीला, कुमकुम, केन सिंह और शीला फास। इफोन दौलत डनाख डंकीवेल आपके एप के लिए एन हेल्पफुल सक्सेस मैथ फरहज। और मैं देखता हूं सूरीनाम से अनीता भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, तो अनीता जी को हम कहेंगे धन्यवाद। पूनम जी आज से मार्ट डंकीवेल पूनम चून करने के लिए, और लिस का शारदा डंकीवेल धन्यवाद चून करने के लिए। और आप मजा ले रहे हैं देवानंद साहब जी के नगमाओं जो पेश हो रहे हैं हियर ऑन यूआर, तो आप मजा लें क्योंकि और भी खूबसूरत गाने आने वाले हैं। प्रोग्राम जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, आज फाइनल एडिशन है देव साहब जी का, और रात्रि में 9 बजे तक प्रोग्राम हम सजाने वाले हैं हमेशा की तरह। अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों महल, फिल्म का नाम है महल, और महल जो है 1969 का है। इतना पॉपुलर है ये नगमा कि अभी अगर चले तो लोग दीवाने हो जाएं। गीत जो आनंद बख्शी जी ने लिखा है और जो किशोर कुमार हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइनटिंगेल आशा जी ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर, कि आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने।

ये कौन आया रे, पुराने गीत सबसे, जब से हम प्रोग्राम सजा रहे हैं देवानंद साहब जी का, तो ये नगमा रोमांटिक सॉन्ग, आवाजें तो किशोर कुमार और लता जी का था, और लिखने वाले या डिकेनिक सेल्फ नीत नक्षप जार्चवी और खेमचंद प्रकाश जी को भी या डिकेनिक उपनीत तमेंस के मदार नोइट इन फरदीप्त, लेकिन खूबसूरत गीत थे, अल्फाजे बहुत खूबसूरत थे और गीत काफी रोमांटिक थे। अलेन ये कन्वेल सीन दा तेन दा तो नो नुमरिस ये कन तो घोर जिद्दी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिने वालों 48 1948 का मूवी है नीहती नाख्तन फिरत, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर शहीद लतीफ साहब जी है और देवानंद साहब जी और कमिनी कौशल का एक फिल्म। कमिनी कौशल फाक मुदर रोल स्पिल्स है और खास करके क्या नाम है भरत मनोज कुमार के मूवीज में कमिनी कौशल माँ के रोल हमेशा अदा किया करते थे। चंदा भी है ये मूवी में मेरे प्यारे सुनो वालों, कुलदीप साहब जी, प्राण साहब जी, प्रतिमा देवी और इंदु शिवराज, हमारे प्रिय स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी, आज सुतमीर डंकीवाल आपके ऐप के लिए, एंजॉय यू आर एंजॉय बैक टू द फ्यूचर एंड एंजॉय द एवरग्रीन सॉन्ग्स ऑफ द एवरग्रीन एक्टर देवानंद साहब जी। ले चलता हूं अख्तम फिरतक से 67 मेरे प्यारे सुनने वालों, 1967 फिल्म का नाम जवलतीफ, और जवलतीफ से निकालेंगे मशहूर नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ। वंस अगेन किशोर कुमार, संगीतकार अब की बार सचिन देव बर्मन, एस देव बर्मन, और आप सुनेंगे ये नगमा, ये दिल ना होता बेचारा।

या ये दिल ना होता बेचारा और कदम ना होते हमारा आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। किशोर कुमार मेरे प्यारे सुनने वालों, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज और मजरू सुल्तानपुरी जी, इनका लिखा हुआ गीत किशोर जी ने गाकर सुनाए हैं और वो भी एस दे बर्मन सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर। 1967 नी हतिन सेवनन सेसख का फिल्म जबल तीफ से हमने नगमा को निकाले। ये खूबसूरत पॉपुलर मूवी देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस किया है, एक्ट किया है और डायरेक्टर है इनके छोटे भाई जो एक ग्रेट डायरेक्टर है, ना सिर्फ डायरेक्टर एक्टर भी है, गोल्डी आनंद ऑफ 12 विजय आनंद जी। देवानंद ने ये मूवी में काम किया है द ग्रेट अशोक कुमार के साथ, तनुजा, विजयंतीमाला हेलन, सचिन पिलगांवकर, अंजू, महेंद्रू फड़ियल, मनमोहन, नजीर हुसैन, सापरू साहब जी, प्रतिमा देवी, जगदीश राज और कौन है, प्रेम कुमार भी है और आनंद कुमार। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और देवानंद साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं। आज फाइनल एडिशन है बैक टू द फ्यूचर में और इन पर पिक्चराइज किया गया नगमा लगातार कुछ हफ्तों से हम आप तक पेश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत नगमाएं इन पर पिक्चराइज किया गया है, जैसे ये रोमांटिक सॉन्ग जो हम चलाने जा रहे हैं, अचिस्ट्रॉन्स 11 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ नीख। आपको मालूम रहे कि मैं आपका साथ दूंगा हमेशा की तरह 9 बजे तक। अब की बार दादा हेमंत कुमार जी का एक नगमा लता जी के साथ मिलकर गाएंगे एक रोमांटिक सॉन्ग, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ और वो भी शंकर और जय किशन की साज और संगीत पर। पुराने मूवी फिल्म पतिता से हम नगमा निकालेंगे। ये गीत इतनी पॉपुलर है कि आज भी अगर गाया जाएगा तो आप पसंद करेंगे। पतिता फिल्म 1953 का है, नीहत इंद्रियन फैफ्त, दादा हेमंत कुमार जी और लता जी को पेश कर रहा हूं। हीर ऑन यू आर।

याद किया दिल ने कहा हो तुम और ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों डाटा हेमंत कुमार जी और मेलोडी क्वीन लता जी की आवाजें हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर फिल्म का नाम पतिता मेरे प्यारे सुनने वालों पतिता 1953 का मूवी है निखतिन द्रियन फेफ्ट और अमैया चक्रवर्ती जी ने डायरेक्ट किया है देवानंद उषा किरण का एक फिल्म जिसमें आगा साहब जी भी है इंदु शिवराज ललिता पवार अमस्टरडम में माइस भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं एंड माइस इज न्यू आनंद वेरिक तो दिल लगाकर काम करना नीट फिल इन स्पन माइस आनंद तू पसीना पसीना हो जाइए नो थैंक यू वेल अरबेज फिटामिना आप तक पेश कर रहा हूँ माइस एंजॉय मेरे प्यारे सुनो लो अगले गीत किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे एक नगमा फ्रॉम द मूवी पेइंग गेस मेरे प्यारे सुनो लो पेइंग गेस 1957 का मूवी है निहतिन सीवन एंड फेफ्ट मूवी फिल्म ब्यूटीफुल मूवीज तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है और ये गीत जो है ऊ निगाहें मस्ताने और देख समा है सुहाना मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ किशोर कुमार आशा जी और वो भी एस डी बर्मन की साज और संगीत पर पेश करता हूँ

0: मस्ताना, ओ निगाहें मस्ताना और देख समा है सुहाना। नाइनटिंगेल आशा जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। एसडी बर्मन की साज और संगीत पर 1957 का फिल्म का फिल्म पिंग गैस से हमने नगमा को निकाले। सुबोध मुखर्जी मूवी का डायरेक्टर मैं दिखता हूँ। मेरे प्यारे से नोलो देवानंद साहब जी और नूतन सुबह खोटे का एक ब्यूटीफुल मूवी, एक मोई फिल्म, और मैं ये मूवी हाल ही में जरूर अगर मौका मौका जब मिलेंगे तो हम देखेंगे। मेरे प्यारे से नोलो, अब वक्त आ गया कि मैं दो आखिरी नगमाएं पेश करूं। अभी से हम आप सभी से आज्ञा लेंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से हमने प्रोग्राम देवानंद साहब जी का सजाए हैं बनाए हैं आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। अगले हफ्ते एक नया कलाकार का प्रोग्राम हम सजाएंगे कुछ हफ्तों के लिए। पहला मैं दो गीत चलाऊंगा और मेरे प्यारे सुनो, पहला गीत फ्रॉम द मूवी छुपा रुस्तम किशोर कुमार का एक नगमा नीरज जो लिखे हैं और जिसका संगीतकार है सचिन देव बर्मन। एक फिल्म जो देवानंद ने प्रोड्यूस और एक्ट किया है हेमा मालिनी के साथ और विजय आनंद गोल्डी आनंद डायरेक्टर जो है, और विजय आनंद ने ये मूवी में भी काम किया है विद बिंदु और अजीत प्राण साहब जी। और उसके बाद में एक आखिरी गीत दादा है मन कुमार जी की आवाज में, हमारे प्रिय सहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ और वो भी एस डी बर्मन की साज और संगीत पर, फ्रॉम द मूवी हाउस नंबर 44 1955 का मूवी। ये भी देवानंद का प्रोड्यूस किया हुआ मूवी है और देवानंद ने कल्पना कार्तिक के साथ मूवी में काम किया है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे सुनों कल रात्रि को। आज के लिए आ गया, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।
1: बाय। सुर पकड़ के

0: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: जब तन पे तरंग रुपया बिखरती है, वहां रंग अपना जमाता है गाना। धीरे धीरे वो वक्त आया मिलन का, जहां शर्म पर्दा हटाता है गाना। तो क्या हुआ,

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।